गाना सगल संग हम गवने आई जो बाबी नो दो वरमान हो मस मस साधु दे भाई सामने रव रया रव रया रव रया आ बाबे कहे सब में रव रया।

लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सदल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत में बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया।

आशिक पलके उठ के अमृत वेले सर नैवंदा गुर के बचन उचार के धर्म साल दे जागे संत जना धर्म साल दी सुरत करन दा किरत बिरत कर धर्म दी किरत बिरत कर धर्म दी किरत बिरत कर धर्म दी ले प्रसाद आण वरतन दा

0: तुम्हारी पुकार सुन ले। माता पिता पर स्वीकृत सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मारी। धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: बस तो जाए सोना।

0: नहीं पिता जी, जित्थों मेरे पति नूं नवा जीवन मिलिया साडे लई ओही थां सुलखनी।
1: रजनी ठीक कहंदी है राजा दूनी चंद, एदी सारी तीर्थ यात्रा ते तपस्या दा फल समुचे तौर ते ऐसे स्थान ते मिलिया है। ए धरती बड़ी पावन है, एनू ऋषिया मुनिया दा वरदान है। ए बेरी दुख पंजवी बेरी है ते ए छकड़ी अमृत दा कुंड है।
2: अमृत इसे पहुंचते गुलाम दास जी ने पर्दा तक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता, जिथे अज लखा इंसान स्नान करके मन निर्मल के तन कंचन करते हैं। की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई अमृत सरोवर के चौवां कूटा वाल खुले दर हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।

करके नितनेम करके सिमरन करके अपना मुख शीशे च वेख ली तेनू ओदे विचों ही मेरे दर्शन हो जाणगे। गज के आखो सतनाम खालसा जी। बाबा दीप सिंह जी जदों ए सुनिया कि ओनू मैं अपना रूप बना देना ते कलगीधर पातशाह कहिंदे दीप सिंह उत्थे ही आ जा। जी पातशाह कोला मांजदा पिया। जी महाराज बड़ा रगड़िया कोला बहुत जपदिया जपदिया कीता। हां महाराज ते दीप सिंह फिर कोले चो अपना मुख वेख नजर आउंदा। आखो सतनाम कोले चो तेनू मुख नजर आना शुरू हो गया। कहिंदे कोला इन्ना क लिशकाया सी कि जदों कोला वेखदे ने बाबा दीप सिंह जी ते कोले दे विचों अपना मुख की कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह दे दीदारे हो रहे ने। गज के आखो सतनाम। प्यारियो जिदी सेवा तो प्रसन्न हो जे ओनू अपना रूप बना दे सच्चे पातशाह कृपा करन। हाथ जोड़ के बेनती जे एक नाम जपण वाले दा दिहाड़ा आप जी मना रहे हो। इथों दे सारे गुरुख प्यारे जड़े सिख वेलफेयर सोसाइटी वाले बाबा दीप सिंह जी वेलफेयर एसोसिएशन वाले वाहेगुरु इन्हां सारयां नूं चढ़दी कला बख्शे।

ये संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष ते सारे ही पंखी बैठे हैं। आप जानते हो कि पंखी अपनी अपनी चोग चुग के जदों सूरज लथ जांदा रात पैण लगदी है तां वृक्ष ते आके कट्ठे हो जांदे हन। इसे तरह यह संसार वृक्ष है, 84 लख जूना विचों परमदा परमदा अपने कर्मां दा खट्टिया खांदा खांदा यह वृक्ष रूपी इस संसार ते आउंदा मनुष्या जन्म प्राप्त करके। जिस तरह पिंडां विच शहरां विच हर एक मनुख ने अपना अपना घर बनाया, इसे तरह वृक्ष ते भी अपने अपने आलने बनाए होंदे हन। पंखियां ने ओ आके बैंदे हन ते जां रात बीती सवेरे अपने अपने राही पैंदे हन, उड़ जांदे हन। इसे तरह ए मनुष्या जन्म भी एक वृक्ष है। मनुष्या जन्म पंछी रूप होके संसार ते आउंदा है, मनुख अपने अपने कर्म भोग भोगदा होया। जिन्हां ने ता भाई इत्थे आके अपना जीवन मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत मिठा बोलदे हन, नेव चलदे हन, अपनी किरत कमाई विचों चंगे पासे भले पासे लाउंदे हन। सास ग्रास नाम जप के जो जांदे हन उन्हां दा आउणा सफल हो जांदा है, ते जेड़े इत्थे आके माड़े कर्म करके जांदे हन उन्हां नूं फिर 84 लख जून दे गेड़े विच दुख भोगने पैंदे हन। इस लई हजूर कहंदे हन भाई ए मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, इस नूं जप जप के सफल करना। जिस तरह दिन चढ़दिया पंछी अपनी अपनी चोग चुगन लई अपने अपने कर्मां दा खट्टिया खान लई उड़ जांदे हन, इसे तरह जदों काल रूपी सूरज चढ़दा ते मनुख भी फिर ए पंज भूतक शरीर छड़ के तुर जांदा। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलन हार किदे नाल दोस्ती करिए। ख्याल कीता हो सकदा के राजा सुखी होवे पर ओ ता सब तो दुखी है। हो सकता है महल माड़ियां विच रहन नाल कोई सुख प्राप्त होवे, ओ भी नहीं है। हो सकता है चंगे बस्तर पहनन नाल जां गहने पहनन नाल सुख मिल जाए, ओ भी नहीं है। क्योंकि सुख ता हरि दे नाम विच है, सुख ता परमेश्वर दी भक्ति विच है। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन सब जग चलनहार।